0: हमारे नाना नानी हिंदुत्व से आते हैं लेकिन हम वर्लुप से हैं हम वर्लुप हैं
1: نحن غولوبيين اصل لبنانيين ومبسوطين كنا غولوب
2: غوادالوبي mi segunda tierra mi hogar la patria de mi hijo
3: Guadalupe is my home there's no place like home you know we see DA from Guadalupe we see Guadalupe from DA so you see this country